0: हजुरले तपाईँ पनि सिङ्गापुर युके स्विजर पोल्यान्ड इन्डोनेसिया रुपियाँहरू
1: गोविन्द गुरुङ फोन नम्बर 0385 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: खेल सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारीको लागि
0: खेल सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 9841 96 47 26

0: ऋण समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान। थप जानकारी को लागि
0: ऋण समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: प्रबंध निर्देशक नंदराम परियार। फोन नंबर 98146 96 46 26।